0: BJ 淡见。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदै बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो।

0: BJ Tanche. विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

0: Ξέχασα γιατί τα σημαντώσα.
1: Νορέστε, το πήγω φωνά μου νιπιτήκε μόνο τα ωραία ράγικη. Κόβει παουζε κοτά μου νιντσα.
2: Τι αφαλέ τσάμε σου τέκει τσιν πόινι, χινούς να ούτε.
1: Παουζε, κάνει ρε τόκε τα πέλαϊ. Καρού όλοι πόγι τα σαφάσουγε ράχνω μόνο εγώ ρέσα. Τώρα πόνι τόκνι πέσα, ή τα πέλαϊ.
3: Ια κουρκου τσάνε ρε τόκε κοβονάνι. Ουάλε εμβουλές λέ χαβάσα γόρνου μόνο εγώ σα. Κότι πιέρνα φου αεφουγνιό.
1: Να την σέι παουζε. Αμή τσάμε. Τόπολα και η ουδένα. Μπορεί φουτάλε, νοχαλάουνο. Ρενόριστε, ambulance άουνα σάμε λαγνί ουνα σακσά. Νόζικα κοσέκο μοτοσάικλ βαέ. Τι σε να ράχερε παουζουλέ, σορπουδόμ σε οψάρ κέντρο, λάνι τα έρη γόνου πόσα.
2: Η τι βέλα τα χαρί κουραπέν την ουδένα, βαϊνά τα σου ενσυπικά βαϊνί.
1: Ω, τα βαϊλε τίκ μπανού βαϊά. Σικίτ σακλένα βανί σαμά, μοιραμίλα και η πανί χώνου ουδένα.
4: Σορπαλή τόκνη βυτικά η σαχάζ βάταβαραν μπανάουνι. ρα σορπαλή τόκικο αγγαλάι. स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ टम्म कसिएको कपडा गरगहना घडी पेटी औँठी आदि भए फुकाली दिएर खुकुलो गराउनुहोस् बिरामी आत्तिए झन समस्या हुने भएकोले बिरामीलाई शान्त रहन सहयोग गर्नुपर्छ कतिपयले सर्पले टोकेको ठाउँभन्दा माथि डोरीले कसिलो गरी बाँध्ने पनि गर्छन् यसो गर्दा रक्त सञ्चारमा समस्या हुन सक्छ जसले गर्दा सर्पले डसेको शरीरको भाग काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ
5: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।